ओ शंकर कैठा शीघ्री श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्यं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो राण घाता जे आस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख्त हुए मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नहीं आय है रक्षा होय ताहे शुभ काला दुष्ट अरिष्ट टरे तात काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरे हो ताके ताप तनक मह हारे हो रिद सिद्ध कर्मो साब होई दुष्ट शाह श्वै सकै ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोखते रहा खड़ग केत में सरन तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर्ब ठौर मो हो सहाई दुष्ट दोखते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सोबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस तुझ जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तात काला मन बांशत फल पावै सोई दुख ना तिसै व्यापत कोई अड़िल सुनै गुंग जो याहे सो रसना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट ना तिन नर के रहै हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्रह सहस पणि जय अर्ध सहस फुन तीन कही जय भाद्रव सुधी अष्टमी रव बारा तीर सुतुद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो पखयाने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समाप्त मस्त शुभ मस्त अफजू दोहरा दास जान कर दास पर कीजै कृपा अपार आप हाथ दे राख मोह मन करम बचन विचार चौपई मैं ना गणेश प्रथम नाऊं किसन बिसन कबहू नह त्याऊं कान सुने पहचान ना तिन सो लिव लागी मोरी पग इन सो महाकाल रखवार हमारो महालोह मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाहें गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्राते परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देग तेग जग मैं दू चलै राख आप मोहे और ना दलै तुम मम करो सदा प्राते पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रात पारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संगारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बहुर करो कविता बेद नाना कृष्ण जथा मात चरित्रो चारो चूक होए कब लिहो सुधारो कवि उबाच दोहरा जो निज प्रभ मोसो कहा सो कहे हो जग माहे जो ते प्रभ को त्याय है अंत सुरुक को जाहे दोहरा हर हर जन दोई एक है बिब विचार काश नाहे जलते उपज तरंग ज्यो जल ही बिखै समाहे दोहरा जब आए इस प्रभ

भगवंत। दोहरा काल पुरुख की देह मो कोटक विष्णु महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रावसस क्रोर जलेश। दोहरा राम कथा जोग जोग अटल सब कोई पाखत नेत सुर्गवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत। चौपाई जो हे कथा सुने आर गावे दुख पाप तेह निकट नायावे विष्णु भगत की ए फाल होई आद ब्याद श्वै सकै ना कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़वदी प्रथम सुख दावन त्वै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लहो लिहो सुधारा। दोहरा नेत्र तुंग के चरण तार सुतुद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग। दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह हम एक ना जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कार मैं ना कहो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल दो

रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दो ता गावहो हरि केरा मान जिनी वसाया। कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया।

कारज सब सवारना सबना गल्ला समरत स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरै घरता तेरै सब किश है जिस देह सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब।

संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे, पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पार पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा।

ही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसैवे प्रवाह, साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाओ अपार, आख है मंग है देह देह, दात करे दातार, फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार, मोहा के बोलन बोलियै जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवै जानियै सब आपे सचियार, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान, गाविए सुनिए मान रखिए भाओ, दुख पार हर सुख घर लै जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई,

एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा सात संगत जीओ सतगुरु जी की महान कृपा बख्शिश का सदका सतगुरु जी ने कृपा की खुले पंडाल विच सज के समूह साध संगत नूं दर्शन बख्श के निहाल किया। सोदर संध्या वेले श्री रहरा साहब जी दे पाठ होए अरदास तो उपरंत सतगुरु जी ने सुभायमान मुखारबिंद तो श्री हुक्मनामे साहिब बख्शे उपरंत श्री सहज पाठ प्रारंभ होए हन। आप जी ने अरदास दे विच सरवण किया ही है कि जो सतगुरु जी की बेदबी होई गुरु घर अगन भेट होया है ये आप जी ने सरवण किया ही है। सतगुरु जी महान कृपा बख्शिश करन तो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ मीरी पीरी दिवस के संबंध के विच दीवान निरंतर चल रहे हैं। धन धन सतगुरु श्री गुरु रामदास जी ने बड़ी महान कृपा बख्शिश की अपने दर घर के सेवक रागी सिंह जिन्हां दे बाबत सतगुरु जी ने बाणी दे विच वचन कीते कि भलो भलो रे कीर्तनिया राम रमा रामा गुण गाओ छोड़ माया के धंद सवाओ कीर्तन निर्मोलक हीरा आनंद गुणी गहीरा। अपने दरों घरों सतगुरु जी ने कीर्तनीय सिंह भेजे हैं। सतगुरु जी की बख्शिश प्राप्त करने वास्ते सिख संगतां हाजरी भर रही ने। जेड़े घरां दे विच गुरमुख प्यारे हैं उन्हां नूं भी बेनती जिन्हां दे पास साधन हैं आ सकते ने गुरु घर उन्हां नूं बेनती है कि गुरु घर दे विच आ के खुले दीवाना दे विच हाजरियां भर के गुरबाणी का रस भिन्ना कीर्तन सरवण करिए जी। सतगुरु श्री गुरु रामदास जी ने साडे उपर तरस करके अपने दरों घरों आने न सेवक कीर्तनीय सिंह भेजे हैं। तो गुरु के सिखो आओ जी गुरबाणी का कीर्तन रस भिन्ना कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त करिए। आरता आरती दे कीर्तन रस भिन्ने शब्दों के कीर्तन इसे ही तरह निरंतर 9:15 बजे तक दीवान सजनगे गुरु घर के कीर्तनीय सिंह हाजरियां भरनगे। संगत नूं बेनती हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: गुरु नानक दे घर दे विच सेवा सिमरन करके पातशाह तो शुभ वर प्राप्त करने ने
1: तिन्हों प्रसन्न करन हिच मेरे
0: ते साडी हमेशा ही इच्छा है गुरु अमरदास महाराज जेड़ी जिम्मेवारी सानू दे के गए ने ओनू बड़ी भावना नाल निभा दईए गुरु नानक दे घर दी संगत कोई भी निराज होके ना मुड़े प्रसन्नता दे सहत आवे और प्रसन्नता दे सहत जावे जी
1: भल्यान कुल भूखन के दास
0: जेड़ा भल्यां दी कुल दे अमोलक गहने धन गुरु अमरदास महाराज जी सन उन्हां दे असी दास हां
1: तिन ऐबो कब होए ना निरास
0: ते असी नी चाहुंदे भी साडी किस भुल कारण महाराज जी साडे नाल निराज हो जावन इथे पातशाह ने 22 मंजियां थापियां ने ओह भी गुरसिख आउंदे रहिंदे ने फिर दर्शन करके प्रचार प्रसार लई अगे वध जांदे ने जेकर असी इथे श्री गुरु
1: गए सौंप गुर संगत सारी
0: धन गुरु अमरदास महाराज गुरु नानक दे घर दी जिम्मेवारी सारी संगतां दी देख रेख उपदेश सत संगत सारी जिम्मेवारी सानू सौंप के गए हन
1: गम नह अब अनबनी बेचारी
0: इस लई तुहाडे नाल जाना ते अनबन जी हो जावे।

हों मैं रोग मानख को दीना, काम रोग मैं गलवस कीना, दृष्ट रोग पचमुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी।

परम सम्मान योग साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी हजूर दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सत्कार योग महापुरख संत बाबा जवाहर सिंह जी और संत बाबा तारा सिंह जी होना दी बरसी दी याद अंदर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी नूं आप जी श्रवण कर रहे सी। सन्मान योग भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी पौंटा साहिब वालिया ने हजूर दी बख्शीश नाल अपनी रचना तो सतगुरु दे अमृत बचन कीर्तन और विचार असानू श्रवण कराई। सत्कार योग बाबा सतनाम सिंह जी उन्होंने जो शब्द कहे ए उन्हां दी गरीब निवाजी है। धन गुरु रामदास जी दे पवित्र दरबार दे अंदर दिन रात गुरु चरणा विच समर्पित ने। आओ धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी अमृत बाणी विचों हजूर कृपा करन आप अपने शब्द दी अपनी कला वरतौन अदब भावना और श्रद्धा दी दात बख्श के विचार करा लैन। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। आप जी ने कीर्तन दी समाप्ति ते भगत रविदास साहिब जी उन्हां दी पवित्र रचना तो उचारण कीते हुए अमृत बचन श्रवण कीते ने। पीड़ एक ऐसी अंदर दी तड़प है खिच है ना तो इस दा कोई रूप है ना इस दी कोई शक्ल है ना इस दा कोई कद काठ और आकार है।

जो जगन लहन से साई कनो दात। इस बेनती फिर सुनियो गुरमुखो महाराज का बचन बाबा फरीद साहब का। पहला पैर है फुलड़ा फल पी पछा रात, जो जगन लहन से साई कनो दात। ये अर्थ साढ़े टीकाकार गुरमुख करते हैं कि जेड़ा रात का पहला पैर है। थोड़ी जी आप जी गुरमुखो एकाग्रता बहुत बनाई जे तुसी, पर ये साड़ी नहीं, एक कमाई वाली रूह का औरा ही है। वो टिका बनेगी बनेगा। उस विच असी अर्थ करने पहला पैर है फुलड़ा कि रात का पहला पैर जिहड़ी बंदगी करनी है, सिमरन करना, नाम जपना है। ये इस तरह जिवें खिड़े हुए फुल ने, ते जिहड़ा रात का पिछल पैर है जिहनूं अमृत वेला आपां कहिंदे, पहले पैर है फुलड़ा फल पी पछा रात। इहदा अर्थ हो गया पछा रात दा पिछली रात जिहनूं अमृत वेला कहिंदे। कहिंदे अमृत वेले जिहड़ा साधना करदा सिमरन करदा है वह फल प्राप्त कर लैंदा है, ते पहले पैर जिहड़ी बंदगी करदा वह फुल प्राप्त करदा। इस तरह अर्थ ना जी, पहले पैर है फुलड़ा फल पी पछा रात, जो जगन लहन से साई कनो दात। पर दास एक बेनती करता है, ये अर्थ ये नहीं आप कर सकते केवल कि पहला पैर फुल ने पिछल पैर फल है, नहीं ये अर्थ बड़े गहरे ने, यह मन नाल संबंधित ने। जिथों मैं गल शुरू की थी, रात नूं सौण लग्या क्यों, सौण लग्या बाणी, सौण लग्या सोहला साहब, पहला पैर है फुलड़ा। आप सब नूं पता है कि फल पहला हुंदा कि फुल हुंदा है। मान लो आ अनार है जी, एक मैं उदाहरण देंदा, अनार पहला आवेगा कि फुल पहला आवेगा, पहला फुल है ना, फुल ही फल बनना है। आ अंब लगे ने, पहला बूर बनेगा कि पहला अंब आऊगा, पहला फुल है ना। ये बड़ी गहरी बात की बाबा फरीद साहब ने, गुरमुखो फुल पहला ने, फुल ही प्रोसैस करता है, फुल ही अगे अगे वध है, उहदा प्रोसैस उहदी प्रक्रिया है वे कि फुल ही बदलदा बदलदा फल का रूप धारण कर जाता है, बिल्कुल पक जाता है। वह फुल पर फुल झड़ जाता है, फुल दे विच भी फल निकलता है। इहदा भाव की होया कि पहले पैर है फुलड़ा। इहदा मतलब है वे भाई सिखो, पहले पैर जदों तुसी नाम जपते पयो, सिमरन करते पयो, सोहला साहब का कीर्तन सोहले का पाठ करके मूल मंत्र का अभ्यास करते करते सौ गए, ये फुल तैयार हो गया है। पर रात नूं वो जपया होया मन विच, सब कॉन्शियस माइंड मन विच अपने आप जाप चलेगा, अपने आप शब्द चलेगा, ते रात सानू पता नहीं। हुण फुल कदों फल बन गया, रुख नूं पता है जी, रुख नूं कोई पता नहीं पर बन ते जांदा है ना। उस कुदरती तौर ते फुल अपने आप फल बन जांदा है। रात नूं गुरु साहिब कहिंदे सौण लग्या जदों तू शब्द पढ़ना है, बाणी पढ़ना है, ये सच विच फुल तैयार हो गया है। ते जदों रात नूं सुत्या शब्द अंदर चलन लग पए, अमृत वेले उसे शब्द नूं एकाग्र होके तू जदों जपना है, सुरत नाल जपे, मुख नाल जपे। संत महाराज जी तां आ चार बाणियां दा जिक्र वार वार करदे, जिहड़े आप जी उहनां नूं सुणदे हो। आपां जदों नेत्र बंद करके कीर्तन सुनीए उहनां दा, कोई बंदा नहीं कह सकदा जी अंदर दा टिकाण। मैं तां बाहर एक वारी कहा सी, असीं रोज़ नवीआं उदाहरणां लभने आ, रोज़ साखियां नवीआं लभदे आ। गुरमुखो तुसीं संत महाराज जी दे सारिआं कीर्तनिआं विच गनका दी साखी, सरमद दी साखी, भाई प्रेमे दी साखी, गुरु अमरदास जी दी साखी, ध्रुव दी साखी, प्रहलाद दी साखी, भाई दया सिंह जी दा चलाना, माता जीतो जी दा, यही पढ़ने जी आप सारे सारे आप संगी बैठे हो, यही ने। ते आप अज 49 साल हो चुके ने, आप 49वीं वर्षी मना रहे हैं, अगले साल 50 साल हो जाने ने। पर सच्ची दसो, मैं बटरी नहीं, किसे दा मन कहिंदा है कि यह कीर्तन जिहड़ा कल सुनिया सी अज आनंद नहीं आउंदा पिया? नहीं प्यारिओ, अंदर टिकिया होवे बंदगी करन वाले दा बोल कदी झूठा नहीं पै सकदा, वह रस भरपूर ही रहिंदा है। मैं एक बार कल भी शायद एक जगह बेनती करके आया, मैं विषय तो दूर नहीं जावांगा, रहांगा वही जो भाई साहब पढ़ के गया, कहां विसासा इस भांडे का। रात में एक बेनती की एक जगह से कल के परसों, देखो पानी है, हाँ जी, आप टेंकियां बनाईया ने इत्थे ना,

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं, इन्हों सारिया ही दुखों का जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करते हैं सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है के मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ।

कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस तुझ जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला।

हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो करियो रक्षा। राख ले हो मोह राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जू अवतरा।

ताहें सब काल दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काल कृपा दृष्ट तन जाहिन हरिहो ताके ताप तनक मह हरिहो।

बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस तुझ जब पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला।

नैतिन नर की रह हो जो याकि एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पनिजय अर्ध सहस फुन तीन कहिजय।

नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जान्यो।

हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करे ओह रक्षा। राख ले हो मोह राखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा।

बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस तुझ जब पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला।

निकट नैतिन नर के रह हो जो याकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पनिज अर्ध सहस फुन तीन कहिज भाद्रव सुधि अष्टमी रववार तीर सतद्रव ग्रंथ।

हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो करियो रक्षा। राख ले हो मह राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जू अवतरा।

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पाल मोह बद कियो।

बहुर रच दीनी। कहों फूल राजा होए बैठा, कहों सिमट भयो शंकर इकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्विहंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघर। दुष्ट जीते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रण कहता। जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवा मरे। पुरख जवन पाग परे तिहारे, तिनके तुम

कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ कर पूर्ण सुब्राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस तुझ जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काल।

तिन नर के रह हो जो याकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पनिज अर्ध सहस फुन तीन कहिज भाद्रव सुधी अष्टमी रववारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सोइया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कौ आंख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जान्यो।

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो।

बहुर रच दीनी। कहों फूल राजा होए बैठा, कहों सिमट भयो शंकर इकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघर। दुष्ट जीते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रण कहता। जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम

ताहें सब काल दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काल कृपा दृष्ट तन जाहिन हरे हो ताके ताप तनक मह हरे हो।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस तुझ जब पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला।

हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो करे रक्षा राख ले हो मोह राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जू अवतरा।

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस तुझ जब पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला।

नमस्कार नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पाल मोह बद कियो।

बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस तुझ जब पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला।

0: छुट्टे।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड।

दर्शन दीदारे अंदर ते अंदर के बोलो जी बंजा प्यारिया चोह साहबजादिया चालिया मुक्तिया हटिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया

0: ईरान अज भी प्रबल अंधकार दे च भटक रहे। हजारां चिराग बेकार हो जाणगे उन्हां मनुखां दे सामने जो अंधे ने, अंधे ने, अंधे ने। ये अंधा पन केड़ी गल दा है? क्या प्रकृति अंधिया नूं जन्म देंदी है? नहीं, किधरे हजारां बच्चियां दे चों ऐसा सी देख सकदे आ जो जन्म तो अंधा होवे। प्रकृति ते सुजाकियां नूं पैदा करदी है। प्रकृति ते दोष आयद नहीं कर सकदे, परमात्मा ते ज्ञानियां नूं पैदा करदा है। बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान गऊ दे बछड़े ने जन्म लिया है, थोड़ी देर बाद उठदा है और गऊ दे अस्तना दी तरफ लपकदा है। इस नूं ज्ञान किसने दे दिता? तेरी खुराक इना अस्तना दे च है, तेरा रिजक अस्तना दे च पे है, ते फिर इस नूं चूंगण दा बोध किसने दे दिता? ये ते सब प्रकृति दे रही है। रिजक दी तलाश दा बोध परमात्मा दे रहा है, राजक रहीम दी तलाश दा बोध भी राजक रहीम दे रहा है, परमात्मा दे रहा है। सबनों ज्ञान दे रहा है, सबनों सोच दे रहा है। पर ये अंधापन क्यों है? एक ते ओ अंधा है जिसनों कह दईए जिदी अखां विच रोशनी है ही नहीं, एक ओ अंधा है जो अखां खोले ही ना, अखां खोले ही ना। बस इन्हां ही अंधियां दी तादाद ज्यादा है जो दीवे दे जलदे होया अखां खोलदे ही नहीं, खोलदे ही नहीं। और लंबे समय तक अखां बंद करन करके अखां विच वेखण दी ताब भी गवा बैठदे ने, ताब गवा बैठदे ने। और फिर जीवन इस तरह जीवदे ने बकौले धन गुरु अर्जन देव जी, जैसे उल्लू सूरज चढ़िया होया है, चानना है, पर उल्लू दी दुनिया च अंधेरा है। जे उल्लू दी दुनिया विच अंधेरा है ते उस मनुख नूं की आखांगे जिस दे जीवन विच अंधेरा ही अंधेरा है? कैसा ते नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आख्या है तो कहण विच कोई संकोच नहीं, उल्लू अंधेरे विच जी रहा है, अंधेरे विच जी रहा है। बहुती मनुखता अंधकार विच जी रही है, क्योंकि अंधकार विच जी रही है ते इन्नू उल्लू कहण विच की संकोच है? संपत दौल झूल संग झूलत माया मगन फिरत घुगना। पंजाबी विच उल्लू नूं घुगू कहिंदे ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक। संपत दौल झूल संग झूलत माया मगन फिरत घुगना। कोई परमात्मा दी समझ नहीं, अंधेरा ही जिंदगी बन गई है, अंधेरा ही आनंद बन गया, अंधेरा ही सुख बन गया। कितना तरस आएगा उस मनुख दी जिंदगी ते, भटकना ही जिसकी जिंदगी बन जाए, भटकना ही जिसकी चाल बन जाए, टकराव ही जिसका जीवन का आधार बन जाए, ते कल कलेश जिदी जिंदगी का लक्ष्य बन जाए। कितना तरस आएगा, कितनी दया आएगी। इस दया नूं हिरदे विच धारण करके धन गुरु नानक देव जी महाराज सुल्तान दी धरती तो चल पए ने, औषधियां नाल भरिया होया झोला लेके, अपने हिरदे विच तरह तरह दी औषधि रख के। जगत एक रोग है, मनुख एक खुद समस्या है, ते सारियां समस्यावां दा समाधान लेके नौ खंड पृथ्वी दे भरमण लई चल पए ने धन गुरु नानक देव जी महाराज। जिथे जिथे औषधि कारगर साबित होई, मनुखता दी जबान चो निकलिया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604 900 6790.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। 4 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਮਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਲਾਲ ਮਸਰ ਲਵੋ 3.99 ਦਾ ਬੈਗ। ਵੱਡਾ ਜੰਬੋ ਸਾਈਜ਼ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ 2.98 ਦਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਹਦਵਾਣਾ 68 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ।
3: ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ
4: ਪੂਰੇ BC ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਚ ਨੰਬਰ 1।
3: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਹਰਬਲਸ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟਾਕਿੰਗਸ, ਆਰਥੋਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3: ਹੁਣ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਏਡ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4: ਫ੍ਰੀ ਪਲਿਸਟਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੇਮਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
5: 3 locations ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ, ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਰੌਕ,
3: ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਿਰਨ ਐਟ 604-581-1900।
6: ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
7: ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੀਅਲਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਹਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ, ਜੋ ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਟਾਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਰੀਅਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
6: ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ
7: ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਨੂੰ
6: 604-351-5111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 604-351-5111 ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।

ये घटना एक सेकंड में घट गई, एक सेकंड में घट गई। इधर जबान ने आख्या वाहे गुरु, इधर मन ने सुने, इधर मन ने सुने, इधर मन नु समझ आ गई, इधर मन नु समझ आई, मन शब्द विच लीन हो गया, जुड़ गया। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान जुड़ गया, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण है, ज्योत दे ज्योत हो गई, जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई। होंदी एक छिन विच है, निर्माण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे। निमक निमक एक सेकंड है, एक चित जै एक छिन दे आयो, काल फास के बीच न आयो। एक छिन एक निमक, इन अतकथनी न समझ लेना। किसे कमरे विच पचास साल का अंधेरा हो, गुप अंधेरा हो, उस अंधेरे नू कढ़न वास्ते पचास साल लगन गए, नहीं एक सेकंड लगेगा, बत्ती जलाई दे गया। जन्म जन्मांतरां दे पाप दुख संताप ते अंधेरा के इनू कढ़न वास्ते कई जन्म लगन गए, नहीं एक सेकंड लगेगा। टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा, एक दम दे टिक जाओ खुदा हाजर ना, ते एक दम ही आज है। बाबा फरीद कहते ने, आज मिलावा शेख फरीद, टाकम गूंजनिया मनो मचिंदरिया। मैं पानी हुण पीवां, प्यास कल मिटेगी कि हुणे मिटदी। मैं भोजन हुण छकां, हुणे भुख मिटदी है या महीने बाद मिटदी है। मैं नाम हुण जपां, फल अगले जन्म विच मिलेगा, साल दो साल बाद मिलेगा। इन्हां गल्लां ने मनुख नूं निराश कीता होया। इह वी मैं अर्ज़ करां, ऐसी गल नहीं है। ऐकर करे सो ऐकर पाए महाराज का तत् छिन। टुक दम करारी जो करो, एक दम विच किधरे टिक जाओ, हाजर हजूर खुदा है। मैं पानी हुण पीवां ते प्यास महीने बाद मिटेगी, मैं रोटी हुण खावां ते भुख कल मिटेगी। लोकी कहिंदे ने कोई नहीं, सहजे सहजे हो जाएगा, गासी लग जांदी हौले हौले। बंदे नूं ताप चढ़े होवे बड़ा जोरदार, ते वो डॉक्टर नूं कहिंदे जरा हौले हौले बुखार मेरा उतारी, महीना दो महीना तड़पदा रहा, कहिंदे छेती कर जल्दी ठीक कर। विकारां दा अज्ञानता दा ताप मन नूं चढ़े होवे, हौले हौले हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ये ठीक नहीं होना चाहता, ये रोगी रोग नाल भी मोह कर बैठा है। मनोचिंतक ऐसा कहने, लंबी बीमारी दे जीण वाले मरीज बीमारी नाल सहमत होकर जीवन और निराश हो जाते हैं, भी ठीक नहीं होवांगे। कोई दसे भी सही उन्होंने, ऐ दवाई ले लो, ऐ दवाई ले लो, उन्होंने अंदर निराशा है। रोग दे जीण की आदत बन गई, विकारां दे जीण का सुभाव बन गया, ठीक होने का ख्याल भी नहीं, और ठीक हो सकांगे ऐसा भरोसा भी नहीं पाई, नहीं ठीक हो सकांगे, ये जीवना पैदा। जैसे जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर हो गुजरे, फ्रायड ने कहा है, हंकार देच, काम देच, क्रोध देच, लोभ देच जीना पैगा, इहदा कोई इलाज नहीं। थोड़ा जिहा इन्हां नूं मदन कीता जा सकता है, बाकी इन्हां दा त्याग नहीं हो सकता, जीवन नूं छड़ नहीं सकदे, इन्हां दे जीवना ही है। यूरोप के पढ़े लिखे बंदियां नूं इस फ्रायड ने बड़ा निराश किया है, जीवना ही है, इहदे जीवना पैगा। उन्हें ऐलानिया किया, भारत के संत गलत कहते हैं, मन विच राम है, कहिंदा नहीं मन विच काम है, मन विच निरंकार है, कहिंदा कतई ही नहीं मन विच हंकार है। पुंज कहिंदा है, कहिंदा मैं मन नूं फोल के देखिया सिवाय हंकार तो होर कुछ भी नहीं है, मैं मन नूं फोल के देखिया सिवाय वासना तो होर कुछ भी नहीं है, मैं मन नूं फोल के देखिया कहिंदा सिवाय काम तो होर कुछ नहीं। एवें कई जाने राम है, राम है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण।

कबीर बरम सुख सागर गरत परत गहल हो अंगुरिया सरवन सुरते नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटुत इंगुरिया। तरले भरा एक शब्द जोदड़िया नाल लिबड़े आया एक वाक बेनतियां दे प्रवाह जारी करदा होया एक बचन पर समय अपनी हालत प्रभु दे अगों प्रगट करन वाला ए महान शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा। अब कहने ने हे प्रभु तू मेरी उंगल पकड़ क्यों मैं चल नहीं सकदा क्यों नहीं चल सकदे। हे प्रभु मैं वो बच्चा जिसने आज ही चलना सीखे और जिस बच्चे ने आज चलना सीखे है वो लंबी लंबी नहीं कर सकता। एक कदम चलेगा दो कदम चलेगा तीसरे ते डिगेगा लाजमी डिगेगा। लेकिन इतनी गल भी स्पष्ट है जिस दिन बच्चा एक कदम पुटदा है मां नु खुशी हो जाती है बच्चे नु चलना आ गया है प्यो प्रसन्न हो जाता है बच्चे ने पैर पुटे ने खुशी नाल मां बाप फुले नहीं समांदे। जद किसी धार्मन मनुख दी सुरत ध्यान प्रभु दे मार्ग ते चल पैंदा है चलो एक कदम ही सही चलिया ते है एक कदम चल चलना एक कदम दा पुटना बड़ी वड्डी करामात है बड़ी वड्डी बख्शिश है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान करदे ने चरण सरन गुर एक पैंडा जाहे चल सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेता है। तू एक कदम चलते सही वाट लखां को दी है चिंता न कर। कदम एक दी ही चिंता होनी चाहिए। अगर एक कदम किसी बच्चे ने पुटे है तो गल स्पष्ट हो गई चलन दी जांच आ गई ये चल पे। जिस दिन ये बच्चा तीन चार साल दा हो जाए ते पैर ना पुटे चले ना मां नू चिंता हो जाती है पिता नू पीड़ा हो जाती है ले जांदे डॉक्टर कोलों हो गया तीन साल दा हो गया चार साल दा पैर नहीं पुटदा तीन चार वरियां दा हो गया अजेश दी जबान चो मां शब्द नहीं निकलिया। कहंदे ने मां अखर सब तो पहले बच्चे दी जबान चो निकलदा है मम्मा अखर पहले निकलदा है मां मां ये पहला करण लग पैंदा है। मां शुरुआत है और अखीर देच इस जबान चो अगर निकले वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मां दा प्रत्यक्ष रूप ते प्रगट होया मां मां मां दे छपे होया परमात्मा दा रूप वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अगर ये नहीं प्रगट होया तो बच्चा अजे बच्चा रह गया है बुजुर्ग नहीं होया। मां कहना आया है वाहेगुरु कहना कहना नहीं आया। जे मां निकले है अजे शरीरक जो मां सी उसका ना ते निकल आया एदी जबान चो भावे मां ने नहीं आखिया मैं मां हां तेरी लेकिन निकलिया प्रकृति इसके मुंह कढवांदी है। चाहे किसी की भाषा इंग्लिश होवे परशियन होवे अरबियन होवे चाहे कोई हिंदी बोलता है सिंधी बोलता है पंजाबी बोलता है दुनिया के तमाम बच्चों की जबान चो जो पहला अक्षर प्रगट आंदा है मम्मा ही आंदा है मां मां मां। और जे जिंदगी दा अंत होवे ते आखरी आखरी अक्षर ए होवे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जीवन यात्रा सफल हो गई जगत ते आया सफल हो गया मां ते निकलिया। और हर पीड़ा दे समय भी
निकलिया हाय मां हाय मां, और मौत दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां, ये बच्चा बच्चा रह गया, अगे नहीं जा सकया। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु मैं बोलन दी जात नहीं आई, तेरे बोल मैं सुन सका मेरे कोल कन भी कोई नहीं, मैं अपनी आवाज तेरे कन्ना तक पहुंचा सका मेरी जबान नु अजे बोलन दी जाच नहीं आई, तेरे रस्ते ते मैं चल सका वो पैर में कित्थों लियावां, हैगे ने मनुख कोल पैर, एक क्लब थिएटरां दे मार्ग ते चल देने, बाजार दे मार्ग ते चल देने, संसार दे मार्ग ते चल देने, कदी कदाई कोई कदम जो परमार्थ दे मार्ग ते चलन। सतगुरु कहिंदे मेरे कोल वो हाथ भी कोई नहीं जो तेरा दामन पकड़ सकन, हाथ है न मनुख कोल, कदी पुत्रां दा दामन पकड़िया, कदी पत्नी दा, कदी पति दा, कदी मां दा, कदी पिता दा, कदी मित्रां दा दामन पकड़िया, कदी भरावां दा दामन पकड़िया, कदी भैण दा दामन पकड़िया, कदी पड़ोसियां दा, हे प्रभु तेरा दामन पकड़ सका अजे मेरे हत्थां दे चो सकत नहीं आई, अजे मेरे हत्थां दे चो पकड़ नहीं आई। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਮਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਮਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਜੈਸਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਸਾ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੈਸਾ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, हे प्रभु मेरे हत्थां ते केवल तेरा ही पल्ला है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज दे अगम्मी बोल, सबे साख कुड़ावे दिथे तो पल्ले तैदे लागी। उर्दू फारसी दामन कह देंदे ने, पंजाबी पल्ला कह देंदे ने। गुरु नानक कहंदे ने हे प्रभु मेरे हत्थां ते केवल तेरा ही पल्ला है। सफल हो गए हथ, तेरा पल्ला मेरे हथे च आ गया। महान हो गए ने हथ, तेरा दामन मेरे हथा च आ गया। ते जब तेरा दामन मेरे हथा च आ गया, हुण जिथे तू उथे ए दामन मेरे हथा च, ए पल्ला मेरे हथा च। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए महान वाक अध्यात्मक गहराइयां नू अपने विच छुपाई बैठा है, जिसनु उजागर करन दी मैं एक निमाणी कोशिश कर रहा। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सर्वन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु ओ खूबसूरत नेत्र मैं कित्थों लियावां जिहड़े तैनू वेख सकदे ने, इस तो ज्यादा होर कोई अखां खूबसूरत नहीं आउंदियां जिन्ना अखां विच परमात्मा आउंदा है। वेखोगे अखां किसे दी अखां विच धन है, टपक रहा है लोभ, किसे दी अखां विच रूप है, टपक रही है वासना, किसे दी अखां विच उसकी औलाद है, टपक रही है ममता, ममता ही दसदी पई है अखां विच तियां पुत्र ने, वाशना ही दसदी पई है अखां दे च रूप रंग है, क्रोध ही दस रहे है ए लाल अखां ही दस रही ने, अखां दे च कोई दुश्मन बैठ गया है और दुश्मन ने अखां लाल कर दितियां। अखां लाल नहीं होईयां, दुश्मन ने लाल कर दितियां, दुश्मन ने अपना रंग अधपक दित्ता है। कदी कदाई ओ अखां जिन्हां दे च परमात्मा आउंदा है, और जद परमात्मा अखां च बैठता है उन्हां नेत्रां तो कोई नेत्र खूबसूरत नहीं आउंदे, वो ऐसी खूबसूरत अख जिहदे चों प्रार्थना झलकदी है, जिहदे च प्रेम झलकदा है, जिसदे चों समदृष्टि झलकदी है, जिसदे चों दया डुल डुल के पैंदी है। उसे दृष्टि नूं आखिया गया अमृतमयी दृष्ट, अमृत दृष्ट,
नहीं ते दृष्टि भी जहरीली होंदी है। जिवें कईयां दे बोल जहरीले होंदे ने, कईयां दी तकनी भी बड़ी जहरीली होंदी है। कईयां दे बोल जख्मी कर जांदे ने, कईयां दी तकनी भी आघात पहुंचांदी है, चोट पहुंचांदी है, गिरा के रख देंदी है। तकनी विच जहर भी है, तकनी विच अमृत भी है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लियो अंगुरिया, सर्वन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगोरिया। मेरे कुल कन भी नहीं तेरे अगम्मी बोला नु सुन सका। सुन सकदे ने कन परिवार दी आवाज, संसार दी आवाज, किथे निरंकार दी आवाज सुनदे ने, बहरे ने, हर एक दे कन बह रहे ने, आवाजां सुन रहे ने। ऐसी गल नहीं, समुचे परिवार दी आवाज सुन सकदे ने, संसार दी आवाज सुन सकदे ने, निरंकार दी ते कदी कदाई कोई कद पुरुष। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं और। हे परिपूर्ण परमात्मा, जितनियां भी आवाजां मेरे कन्ना च पै रहियां, पंछियां दियां, पशुआं दियां, मनुखां दियां, बदलां दी गर्जन, पवन दी शांशां, मैनू ते इंज लगदा है ए तों ही बोल रहे हैं। सब तेरी आवाज, सब तेरा नाद, सब तेरा संगीत। तो साहिब कहंदे ने, मेरे कोलो कन भी नहीं, मेरे कोलो जबान भी नहीं, मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचावा। किसे दे बोल घर तो बाहर नहीं जांदे, उसदे घर दे ची सिक्का चलदा है, ये सिक्का उसका बाहर नहीं चलता। इहदी गल घर दे बंदे ते मन सकदे ने, बाहर दे नहीं। इहदे बोल बाहर नहीं चलदे। कदी कदाई कोई कद व्यक्ति उसदे बोल सारे महल्ले, सारे कलोनी चल जांदे ने, मन लैंदी है समुची वसनीक, उसके बचना नु, उसके बोला नु मन लेंदी है, सुन दी है। किसे किसे दे बोल राज दरबार दे च भी पहुंचदे ने, उत्थे भी सुने जांदे ने। कदी कदाई कोई लखां करोड़ां च पिकद खुशकिस्मत इंसान, जिसदे बोल निरंकार तक पहुंचदे ने और सुनदा है निरंकार, उसदे बोल परमात्मा नु भी सुनने पैंदे ने, उसदे बोल ईश्वर नु भी सुनने पैंदे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, उस जबान में कित्थों लेवां जिहड़े तेरे तक बोल पहुंचा सके, वो कन में कित्थों लेवां जिहड़े तेरे बोल सुन सके, वो नेत्र में कित्थों लेवां जो तेनू वेख सकन, और हत्थां दी मैं पकड़ कित्थों लेवां जो तेरा दामन पकड़ सकन। मेरे कोल तो पैर भी कोई नहीं तेरे मार्ग ते चल सकन। मनुख दी सारी अहमियत खासियत ज्ञान इंद्रियां करके है, कर्म इंद्रियां करके है। अगर एक कर्म इंद्रेस दे कोलों खो लईए ते ज्ञान इंद्रेस दे कोलों खो लईए, फिर पत्थर ते मनुख दे च कोई फर्क नहीं है। पत्थर चल नहीं सकदा, पत्थर किसे पत्थर दा दामन पकड़ नहीं सकदा, क्योंकि उहदे कोल हथ पैर नहीं ने। पत्थर नहीं बोल सकता, पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर वेख नहीं सकता, पत्थर सुंग नहीं सकता, पत्थर स्पर्श नहीं कर सकता, पत्थर सोच नहीं सकता। अगर यही सब कुछ धार्मिक तल ते मनुख ना कर सके, तो कम से कम धार्मिक दुनिया दा ते पत्थर ही है और कुछ भी नहीं है। होवेगा बाजार दे च इंसान होवेगा, गुरुद्वारे मंदिर दे ते बैठा है जिवें पत्थर, जिवें एक पत्थर नू कोई बोध नहीं, पत्थर दे च कोई गति नहीं, पत्थर दे च कोई पकड़ नहीं, पत्थर कोई सुनदा नहीं। मैनू ते एक गाथा याद आई एक सूफी संत हसन दी, वो जद भी कुरान दी तलावत करे ते फिर वाज देवे व्याख्या करे, तो मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदा सी और पिठ कर लेंदा सी स्रोतियां दी तरफ। कुछ दिन ते स्रोतियां ने बर्दाश्त किया, चलो खैर सुन दे पाया, चलो मुंह साड़ी तरफ नहीं करदा ते ना सही, बोल साड़े तक पहुंचते ने। लेकिन एक दिन स्रोतियां ने बेनती की थी,
फकीर साई ऐसा क्यों कर दे हो? जब सानू सुनाण वास्ते ही तलावत करते हो, जब सानू सुनाण वास्ते ही उपदेश आवाज देंदे हो, फिर मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदे हो, पिट साड़ी तरफ कर लेंदे हो। तो हसन मुस्कुराया, कहिंदा मित्रों मैं थोड़े विच ते दीवार विच कोई फर्क नहीं समझदा, थानू सुना दिता दीवार नू सुना दिता एक कोई गल है, कोई फर्क नहीं है। मेरे कहने नाल दीवार नहीं बदलती, मेरे कहने नाल तुसी भी नहीं बदलते। मैं बोलदा दीवार नहीं सुनदी, मैं बोलदा तुसी भी कित्थे सुनदे हो? ओही कुछ सुनिया जांदा है जो मनिया जांदा है, जिसनू मनिया ही नहीं तो की सुनिया? इस तरह का सुनना तो फिर दीवारां भी सुनदियां। धार्मिक दुनिया दे मनुख पत्थर दा पत्थर रह जांदा है, जैसे एक मासूम बच्चा कहना ते यही बनेगा पत्थर दी तरह, कुछ भी नहीं सुनाई देंदा पिया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, चल भी नहीं सकदा, कुछ पकड़ भी नहीं सकदा, बोल भी नहीं सकदा, कोई भी बोध नहीं इसनों। इते गोद इच इंज पिया जिमे एक पत्थर, लेकिन पत्थर दे ए उम्मीद नहीं कीती जा सकती कि कदी ये चलेगा, कदी ये दामन पकड़ेगा, कदी ये लदबले बोलेगा। बच्चे ने विश्वास गोद च रखे और ममता नाल रखे है, आसा जुड़ी हुई है, उम्मीद जुड़ी है, अज नहीं ते कल चलेगा, चलो अज नहीं ते कल बोलेगा, अज नहीं ते कल सुनेगा, अज नहीं ते कल इसनू असलियत दिखाई देगी। सत्संग दे जो सत्संगी बैठे होंदे ने, गुरु इसे ढंग नाल बर्दाश्त करदा है, चलो कोई गल नहीं, अज चलना नहीं आया कल चल लेंगे, अज वेखना नहीं आया कल वेख लेंगे, अज सुनना नहीं आया कल सुन लेंगे। अवतारी पुरुष इन्हां सत्संगियां नूं इस ढंग नाल बर्दाश्त करदे ने, और अवतारी पुरुष इस ढंग दी उम्मीद उन्हां नाल जोड़दे ने। इस शब्द दे अर्थ कीते ने महान दार्शनिक फिलोसफर वकत दे गुरबाणी दे टीकाकार भाई साहब भाई गुरदास। अपने आलमाना ढंग नाल इंज खोलदे ने, देखबे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए, देखो कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए।

मत मेना मन नेचल होए कैसे उन मन लेवल आई है। हे गुरु जो तेरी सोचनी है जो तेरी मत है वो मैनू कबूल नहीं है। जो मेरी सोचनी है जो मेरी मत है वो तेनू कबूल नहीं है। तो संबंध किस तरह जुड़े है, रिश्ता किवें जुड़े है। एक बच्चे दी सोचनी नाल एक 70 साल का बुढ़ा सहमत हो गया है, इसनू बुढ़ा आखण की लोड़ नहीं है भी बच्चा है। पर एक 4 साल का बच्चा एक 80 साल के बुजुर्ग और महान तत्वेता ब्रह्म ज्ञानी संत नाल सहमत हो गया है, इसनू 4 साल का बच्चा आखण की लोड़ नहीं, ये बुजुर्ग है। उच्चे ख्यालां नाल ओही सहमत हो सकता है जो उच्चा है, सहमत हो सकता है जो छोटा है। धन गुरु अंगद देव जी ने इसनू बड़ा सोहना खोलिया है। नाल इयाने दोस्ती वड्डा रू सोनिओ, पानी अंदर लीक जाओ तिसदा थाओ ना थैओ। अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती, अपने तो छोटे नाल भी नहीं हो सकती। ये दोस्ती पानी दी लकीर होवेगी, इधर लकीर कड्डी इधर मिट गई। एक 80 साल दे बिरद दा 5 साल दे मासूम बच्चे नाल ममता दा संबंध हो सकता है, दादे पोते दा संबंध हो सकता है, मित्रता नहीं है, दोस्ती नहीं है। दोस्ती ते समतल ते हुंदी है, बराबरी दे तल ते हुंदी है, विचारां दी सांझ। तो क्या 80 साल दा बुढ़ा ये 4-5 साल दे बच्चे दे विचारां नाल सहमत होवेगा? अगर हो गया तो इसनू बुजुर्ग कहण दी लोड़ भी नहीं, ये बच्चा है। क्या ये बच्चा 70-80 साल दे इस बुजुर्ग दे विचारां नाल सोचणी नाल तरजे जिंदगी नाल सहमत होवेगा? कथा ही नहीं। अगर सहमत हो गया तो बच्चा बच्चा नहीं, ये बुजुर्ग है। दोस्ती समतल ते हुंदी है, बराबरी दे तल ते हुंदी है। अगर एक मूर्ख नाल एक ज्ञानी सहमत हो गया, सियाणा सहमत हो गया, इसनू सियाणा आखण दी लोड़ की मूड़ है? और एक महान सियाणे नाल दार्शनिक नाल ज्ञानी नाल एक मूर्ख सहमत हो गया तो हुण इसनू मूर्ख कहण दी भी लोड़ नहीं, सियाणा हो गया, सूझवान हो गया, तल सम हो गया, बराबर हो गया। भाई साहब कहिंदे मन में गुरमत, गुरमत में ना मन ने चल होए कैसे उन मन ले उलाइए। जो मेरी मत है गुरु तैनू कबूल नहीं, जो तेरी सोचनी है मैनू कबूल नहीं। तेरी सोचनी देच परमात्मा है, मेरी सोचनी देच पदार्थ ने। तेरी सोचनी देच राम है, मेरी सोचनी देच काम है। तेरी सोचनी देच निरंकार है, मेरी सोचनी देच अहंकार है। मेरी सोचनी नाल तू सहमत नहीं, तेरी सोचनी नाल मैं सहमत नहीं, तो रिश्ता किस तरह जुड़े है? मैं नेड़े किस तरह आवां? मन में गुरमत, गुरमत में ना मन ने चल होए कैसे उन मन लेवल आइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे वो नायक की नायका कहाइए। भाई साहब कहने अंग अंग टूटे ने, ना मेरे कोल हाथ ने, ना मेरे कोल पैर ने, ना मेरे कोल अखा ने, ना मेरे कोल कन है, ना मेरे कोल रसना है, ना मेरे कोल सोचनी है। हे गुरु मैं तो पत्थर दा पत्थर, बिल्कुल पत्थर दा पत्थर। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने चलना आ गया हे प्रभु मैनू खुशी हुई है, पर उच्च बड़ी है जो चलना आया जिसने आज ही चलना सीखा तो किन्ना क चलेगा? एक कदम गिरेगा, लाजमी गिरेगा। इस वास्ते फरियाद कर देने सतगुरु तू मेरा हाथ पकड़, तू मेरी उंगल पकड़। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। एक कदम पुटन दी ते आप मेहनत करनी पैंदी है, एक कदम चलन दी ते आप समर्था जुटानी पैंदी है। कहिंदे ने इतनी समर्था कोई जुटा लवे तो बांह पकड़ लैंदा है परमात्मा, बांह पकड़ लैंदा है गुरु, और फिर सारी लंबी वाट तय हो जाती है सहारे नाल। ईश्वरी जो है सहारे नाल। थोड़ी जिया झलक दिखाई देती है, थोड़ी जिया, तो यह उन महान झलक नू भी वेख सकेगा। थोड़ी जिया झलक की अपने औगुण दिखाई देने लग पैने, एक झलक है। पहला प्रकाश की है,

0: अपनियां कमजोरियां दिखाई दे जाना बड़े तो बड़े बलवान मनुख सियाने मनुख कदी उन्होंने अपने अवगुण नहीं दिखाई देते और कदी उन्होंने अपनी कमजोरियां कबूल भी नहीं किया। दिखाई देन ते कबूल करन कदी कोई गुनाहगार नहीं कहता कि मैं गुनाहगार हां, ना गुनाह दिखाई देंदे ने ना गुनाह मनदा। अज तक अदालतां दे जितने कातल पेश होए जितने चोर डकैत पेश होए किसी ने भी नहीं आखिया असी कतल कीता है गुनाह कीता है, गुनाह कीते कबूल ही नहीं, गुनाह गुनाह दिखाई नहीं देंदा। और गुनाह किधरे रोज भी किरत बन जाए तो गुनाह धंधा बन जाता है, गुनाह गुनाह नहीं रह जाता, पाप धंधा बन जाता है, पाप पाप नहीं दिखाई देंदा। कमजोरी अगर किरत बन गई है तो फिर कमजोरी दिखाई नहीं देवेगी क्योंकि ते किरत है, ये ते धंधा है, धंधा ते धंधा है। कई दफा ऐसा होता है पाप धंधा बन जाता है, गुनाह धंधा बन जाता है, दुनिया भर का अनर्थ धंधा बन जाता है। तो फिर धंधा दिखाई देता है, गुनाह नहीं दिखाई देता, किरत दिखाई देती है, पाप नहीं दिखाई देता। जब किरत ही दिखाई दे रही है, सारे गुनाह धंधा दिखाई दे रहे हैं, तो ये मनुख हुण गुनाह नूं किस तरह देखेगा, किस ढंग नाल देखेगा? अगर अपनी कमजोरी दिखाई देने लग पई है, अपने औगुण दिखाई देने लग पे ने, ये पहली झलक मिली है, दूसरी झलक प्रभु दे गुण दिखाई देणगे। अपना गुनाह दिखाई देने लग पे है, परमात्मा का पुन प्रताप दिखाई देवेगा। अपनी कमजोरी दिखाई देने लग पई है, परमात्मा की परम शक्ति दिखाई देने लग पेगी। कतई नहीं उसनु शक्ति दिखाई देने लग देवेगी, चाहे कितनी शक्ति की पूजा कर लवे और दुनिया कर दिए, शक्ति विपाशक बन दिए, शक्ति की पूजा कर दिए, उसे नु इस शक्ति की झलक पैंदी है जिसनु पहले सब तो अपनी कमजोरी की झलक पैंदी है। जिसनु अपनी कमजोरी नहीं दिखाई देती उनु प्रभु की शक्ति कित्थे? जिसनु अपने गुनाह नहीं दिखाई देते उसनु परमात्मा का पुन प्रताप कित्थे? जिसनु अजे अंधेरा ही नहीं दिखाई देंदा वह चानने नु वेखण विच किस तरह समर्थ होवेगा? कथा ही नहीं। एक डॉक्टर प्रसन्न हो जाता है जिसने अखां का ऑपरेशन किया है, पट्टी खोली है मरीज की, आहिस्ता आहिस्ता अखां खोल। जैसे वो अखां खोलता है तो डॉक्टर पूछता है कुछ दिखाई देता? कहिंदा हां अंधेरा अंधेरा। डार्क रूम दे चाकर अखां उस दिया खोलियां गई ने, पट्टी खोली गई है, चारों पासे काले पड़दे ने, कहिंदा अंधेरा। डॉक्टर कहिंदा कामयाब होया ऑपरेशन, अंधेरा दिखाई दे रहा है, हुण तेनु रोशनी भी दिखाई देवेगी। अंधे नु अंधेरा भी नहीं दिखाई देंदा, अंधे नु कुछ भी बोध नहीं, जन्म दे अंधे नु कुछ भी पता नहीं कि अंधेरा की होंदा है, उसकी वास्तविकता की होंदी है। आम दुनिया ते ऐसा कहंदे है कि अंधे दी दुनिया च अंधेरा है, कतई अंधेरा नहीं, उसनु अंधेरे दा भी बोध नहीं है, उसने कदी अंधेरा भी नहीं देखा। जिसने कदी अपनी कमजोरी नहीं देखी उन्हें परमात्मा की शक्ति कित्थे? कहंदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होए भाई साहब भाई नंद लाल थे, कह लगे तुसी मैनु बहुत अच्छे और प्यारे लगते हो, थोड़ी सेवा ते प्रसन्न, तुसी कुछ मांग लो। जद कोई बहुत प्यारा लगे बहुत चंगा लगे बगलगीर करन नु जी करे फिर कोई भी करन नु भी जी करता है, उस तो निछावर होन नु भी जी करता है, उस तो सदके होन नु भी जी करता है। सतगुरु कहने तेनों कुछ देना चाहते हैं, तेरी खुशी लेनी है, मंग। इस रब्बी शायर ने जो सतगुरु की संगत करदिया करदिया अगम्मी झलकां वेखण दे समर्थ हो चुकिया सी, हथ जोड़ के बेनती करता है, मंग मंगता है। या इलाही चश्मे बीना ए बिदे दर सरम अज इश्के सौदा ए बिदे, ए मेरे गुरु ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਤੇਰਾ ਜਲਵਾ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਸ ਝਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਵਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਕਹਿਲਾ ਸਕਣ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ
3: ਪੂਰੇ BC ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਚ ਨੰਬਰ 1।
2: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਹਰਬਲਸ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟਾਕਿੰਗਸ, ਆਰਥੋਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
2: ਹੁਣ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਏਡ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3: ਫ੍ਰੀ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੇਮਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
4: 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ, ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਰੌਕ,
2: ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਿਰਨ ਐਟ 604-581-1900।
5: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

0: क्यों, ऐसा क्यों कह देता है? भूख है, खाना पीना अमृत है, एक एक बुरकी अमृत है, शरीर दी लोड़ा नु पूरा करेगी। भूख नहीं है, हुण एक एक बुरकी जहर है, रोग है। इस वास्ते वैद धनंतर ऐलानिया कहिंदे सन, होर रोगां दा कोई कारण नहीं, 90% आहार रोग खाने पीने तो रोग पैदा होंदे। आहार रोग, आहार चिकित्सा, आहार दारू, आहार ही औषधि है। खाना पीना औषधि है, खाना पीना रोग है। कीड़ा खाना पीना रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐसा फरमान कीता है, बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। इस होर दे की अर्थ करोगे, निकम्मे चकरा च ना पै जाना। बाबा होर खाना खुशी खुआर, भुख ते है नहीं, होर हुण होर खाई जांदा, भुख ते है नहीं। दो रोटियां नाल पूर्ति हो गई, गुरबाणी ग्रामर दे मुताबिक यही अर्थ ने। मन मत नाल कोई अर्थ करे ते करदा फिर। बाबा होर खाना खुशी खुआर, भुख ते है नहीं, खा रहे है, एक एक बुरकी रोग होवे, एक एक बुरकी जहर बनेगे, एक बुरकी शरीर दे अनर्थ पैदा करेगे। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। जरूरत तो खादा होया तन नु रोगी बनाएगा, मन नु विकारी बनाएगा, शक्ति अधक बनेगी, ओदी लोड़ नहीं। तो मैं अर्ज करा, तन भोजन है, मन भोजन नहीं है। पर भुलेखे करके तन दियां लोड़ां नु मन ने अपनी लोड़ समझ ले, तो उहदे नाल की आउंदा है? तन ते लोड़ां दे तल ते सीमित रहिंदा है, तन दियां लोड़ां मन दे तल ते लोभ बन जांदियां। लोभ मन दे च आउंदा है, तन दे च नहीं आउंदा। तन ते तृप्त हो जांदा है, भुख मिट गई, तन ते साफ कह देंदा नहीं लोड़ हुण मैनूं। और सारियां ही तन दियां लोड़ां बिल्कुल सीमित ने, लोभ सीमित नहीं है, वो की नहीं सीमित। मनुख लोड़ां करके बेईमान नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। मनुख लोड़ां करके भ्रष्ट नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। मनुख लोड़ां करके धोखेबाज नहीं बनदा, लोभ करके बनदा। मनुख लोड़ां करके पापी नहीं बनदा, लोभ करके बनदा। कबीर, जहां लोभ तहां पाप है। लोभ जिथे उथे ते पाप होएगा, लब पाप दोए राजा में था, कूड़ हुआ सिकदास। अगर लोभ राजा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते, पाप वजीर आजम है, उसका नाल ही रहेगा। लब ते पाप दोवें इकट्ठे रहेंगे, लोभ ते पाप दोहें इकट्ठे रहेंगे। मैं फिर अर्ज करा, लोड़ा करके मनुख भ्रष्ट नहीं आता, लोभ करके आता। लोड़ा दी ते सीमा है, कितनिया लोड़ा ने, बिल्कुल सीमित ने, लोभ दी कोई सीमा नहीं। अरबां खरबां दी धन संपदा जमा हो जाए तां भी लोभ शांत नहीं होता, लोभ दी कोई सीमा ही नहीं। इस वास्ते इंज कह रही है, लखां पति भी मंगता है भुखा है भिखारी है, करोड़ां पति भी मंगता है भुखा भिखारी है, अरबां पति भी नंगा है भुखा है भिखारी है। बल्कि सतगुरु कहिंदे ने, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखी है। सारी सृष्टि का भी राजा बन जाए, दुखी दा दुखी रहे। कारण, शरीर दियां लोड़ां नो जद मन ने लोभ बना लिया, लोभ दी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। गुरबाणी समझांदी है, मन तेरी लोड़ कुछ होर है, तू तन दी संगत करके तन दियां लोड़ां नूं अपनियां लोड़ां समझ बैठा है। तन ते बनया रोटी तो, भोजन तो ठीक है, तू रोटी तो नहीं बनया। फिर तू किस तो बने है? कहो कबीर ए राम की अंश, तू ते राम दी अंश है। मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। हुण मैं इसका दूसरा पहलू बयान करा। जन्म तो ही तन दे अंदर भोजन दी भुख है, जन्म तो मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है। एक कथा तन वास्ते नहीं, इहदे नाल कोई पेट नहीं भरना। अगर पेट भर सकता है तो फिर लंगर पानी दी कोई लोड़ ही नहीं। इस कीर्तन नाल तन दियां लोड़ां दी पूर्ति नहीं आउंदी। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप कोई तन दियां लोड़ां नूं पूरा नहीं करदा। इस चक्कर च ना पैणा। इह मन वास्ते, इह मन वास्ते। भोजन मेरे सामने पिया पर भोजन नाल मैं अपना तन ना जोड़ा, भाव बुरकी नूं मूंह च ना पावां, मेरी भुख नहीं मिटेगी। कीर्तन मेरे सामने हो रहा है, पाठ मैं कर रहा, पर मैं इस नाल अपना मन नहीं जोड़दा। यकीन जानो, बाणी पढ़द्या भी मन रोंदा पिटदा रहेगा, दुखी रहेगा, संताप ग्रस्त रहेगा, चिंतातुर रहेगा, सोगी रहेगा, भावें सारा दिन पढ़ता रहे बाणी। कहिंदे ने मैनू मिलदे ने कई, अज असी चार सुखमनी साहब दे पाठ कीते ने, मैं कि तेरा चेहरा ते दसदा पे एक पंक्ति भी नहीं तेरे मन ने सुनी। उस तरह ही सोग दे चें, चिंता दे चें, हंकार दे चें, विकार दे चें, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 36 प्रकार का भोजन मेरे सामने पे है, मैं बुरकी मूंह च नहीं पाई। चलो मूंह च भी पा ली है, स्वाद आ गया सर, पर मैं थले नहीं की थी, कंठ तो थले नहीं की थी। भुख नहीं मिटेगी, भुख नहीं मिटेगी। एक एक बुरकी ही अंदर जाएगी, भुख बाहर आएगा। मन दी भुख ये भोजन नहीं है। जन्म तो तन दे अंदर रोटी दी भुख है, भोजन दी भुख है। जन्म तो शरीर दे ना मन देच भजन दी भुख नहीं है। इतनी मर्ज करा नहीं है। विद्वान इंज भी कहते ने, जेदे अंदर हर वक्त भोजन दी भुख है, भुख तो मुराद है भिखारी, हर वक्त मनुख भिखारी है। पर किसे मन दे अंदर भजन दी भुख पैदा हो जाए, सिर्फ भुख बादशाहां दा बादशाह हो जाता है, शैन शाहां दा शैन शाह हो जाता है। इनू मैं दूजे नुक्ते नाल बयान करा। संसार दे मार्ग ते चल के बहुत कुछ प्राप्त हो भी जाए, अखीर दे च पता चलता है कख नहीं मिले, कुछ भी नहीं, हथ खाली है। निरंकार दे मार्ग ते चल के, धर्म दे मार्ग ते चल के जे कुछ नहीं भी प्राप्त होया, बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। नहीं परमात्मा मिलया, परमात्मा दी प्यास मिल गई है, उहदी तड़प मिल गई है, उहदी भुख मिल गई है। भगतां ने इसते भी शुकराना कीता। पता है क्यों? किसे मनुख नूं भोगन भुख ही ना लगे भोजन दी तन दे तल ते, तो आयुर्वेद आचार्य कहिंदे ने तन रोगी है, रोगी बीमार। 104 डिग्री का बुखार चढ़िया होया, 36 प्रकार का भोजन परोस के उसके अगों रखे, कहिंदा नहीं मैनू भुख नहीं है। अगले कहिंदे ने 4 दिन का तू कुछ खादा नहीं, मंजे ते पिया, खा, कमजोर होंदा जा रहा है। वैद कहिंदे ने खा, कहिंदा भुख नहीं है। इतना जोर दा ताप उन्हें भुख नूं मार दिता है, भुख दे ताप नूं दबा दिता है। फिर जस उसनूं प्रेरदिया नहीं खा, नहीं तो शरीर निढाल होवेगा, कमजोर होवेगा। वो खांदा है, कहिंदा स्वाद नहीं। आपकी ज्ञातली अर्ज करा, आयुर्वेद आचार्य कहिंदे सारी जबान स्वाद नहीं मानती, कोई थोड़े जिहे तन धूने जबान दे च ओ रस लैंदे ने। ओ बारीक तंतु जोर दे बुखार करके कमजोर हो जाते, शिथिल हो जाते, रस लैण दी उन्हां च समर्था नहीं रह जाती, कम नहीं करते। तो बंदे नूं भोजन दा स्वाद नहीं आउंदा, जदकि है स्वाद ही। जो तंतु स्वाद माण सकदे ने ओ रोगी हो गए ने, रोग करके कमजोर हो गए ने, शिथिल हो गए ने, स्वाद नहीं आउंदा। कहिंदा स्वाद नहीं है, भुख दा ना लगना ते स्वाद दा ना आउणा इस गल दी पहचान है तन रोगी बीमार है। हुण दूसरा पहलो, जिस मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है, नाम दी भुख नहीं है, मन रोगी है, रोगी है। ऐसे रोगियां दी तादाद बहुत थोड़ी है जिन्हां नूं भोजन दी भुख नहीं लगदी। ऐसे रोगियां नाल सारा संसार भरिया पिया है जिन्हां नूं भजन दी भुख लगदी नहीं, लगदी किधरे एक दिन रोटी नहीं खाधी, सौं नूं दसदा फिरदा अज ते मैं खा रोटी खाण दी वेल नहीं मिली, नहीं खाधी, अज ते भुखे रह गए। घर वाले भी चिंता करदे ने, महीना महीना नितनेम नहीं कीता, गुरुद्वारे नहीं आया, जप नहीं कीता, ना घर वालियां नूं अफसोस ना इहनू अफसोस, क्यों? ना घर वालियां नूं भुख लगदी है भजन दी, ना इस नूं लगदी। घर वाले भी रोगी, ए भी रोगी। ऐसे रोगियां दी तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है जिन्हां नूं भोजन दी भुख नहीं लगदी। ऐसे रोगियां नाल सारा संसार भरिया पै जिन्हां नूं भजन दी भुख लगदी नहीं। महाराज कहिंदे सारे ही रोगी ने, जो जो दिसे सो सो रोगी। ते रोगी दी पहचान की होवेगी, खुद फैसला कर लेना। इहनूं सादी कहिंदे ने तो खुद बा मुनसब सुध, अपना फैसला आप कर, दूजे तो ना करा। तू की है, दूजा की जानदा तेरे बारे, तेरे विचार की ने, तेरी सोचनी की है, तेरा चिंतन की है, दूजे नूं की पता, उते चित्र गुप्त है, अपना फैसला आप कर। जो तू दिखाई दे रहे हैं तू ओ नहीं है, जो तू सोचदा रहना है तू ओ है। जो तू दिखाई दे रहे हैं तू ओ नहीं है, जो तेरे अंदर विचार चलते रहने तू ओ है। जो तू दिखाई दे रहे हैं ते दुनिया जो कुछ तेनू जान दी है ते कह दी है तू ओ नहीं है, जो तेरे अंदर चिंतन चलता रहता है तू ओ है। कहिंदे ने एक कोई मनुख सारी दुनिया नू देखदा है, सूरज चंद तारियां नू भी देखण दी इच्छा है, उत्थे जाण दी भी इच्छा है, अपने आप नू नहीं देखदा, नहीं देखदा। हर मनुख सारियां दे ते नेड़े होना चाहुंदा है, अपने नेड़े नहीं। चलो मैं इस तरह भी बयान करां, एक पति अपनी पत्नी दे जितने नेड़े है अपने नेड़े नहीं है। पत्नी बारे बहुत कुछ जानदा है, उहदे गुण अवगुण सुभा सब कुछ जानदा है, अपने बारे कख भी नहीं जानदा, कुछ भी नहीं पता। ते हुण मैं इंज भी अर्ज करां, एक पत्नी पति बारे बहुत कुछ जानदी है, बड़ा कुछ पता है, उहदी हर कमजोरी दा, उहदे हर अवगुण दा, उहदी हर खूबी दा, उहदे हर सुभाव दा पता है, अपना कख भी नहीं जानदे, कुछ भी नहीं पता। एक पिता अपने पुत्र दे जितना नेड़े है अपने नेड़े नहीं है। एक पुत्र पिता दे जितना नेड़े है अपने नेड़े नहीं है। एक भरा जितना भरा दे नेड़े है अपने नेड़े नहीं है। ते जद अपने तो ही दूर है, आई दूर, बिल्कुल दूर, तो अपनी असलियत का पता नहीं चलता। अपनी असलियत का पता, अपने नेड़े आन का मतलब अपने विचारां दे नेड़े आवना, अपनी सोचनी दे नेड़े आवना, अपने चिंतन दे नेड़े आवना। मैं की याद करता रहना, मैं की सोचता रहना, मेरे अंदर किहड़े विचार चलते रहते। अगर कोई इस नूं देखण वाला है तो गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने गुरमुख है, इहो मन आर सी कोई गुरमुख देखे। इते गुरमुख है, इते मान गुरमुख है, इते अपने नेड़े आ गए, अपने विचारां नूं देखण लग पए। ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਗੰਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਗੰਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 100% ਲੋਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ, ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲਏ ਜਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਰੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਦਾ, ਉਸਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਉਸਦਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਂ ਇਕਾਗਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂ। ਕਿਸੇ ਡਕੈਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਡਾਕਾ ਡਾਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਰ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਨ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕਾਗਰ ਆਉਂਦਾ? ਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਹਰ ਕਰਮ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਕਸੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਏ। ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦਾ ਅੰਦਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਾਮ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਲੋਭ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤੋਖ ਔਰ ਨਾਮ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਪਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, तो विकारां दे संस्कार बनते जाणगे। कर कर करना लिख ले जा, जिहड़ा कम असी पूरे मन नाल करदे अंदर लिखिया जाता। अनर्थ अंदर बड़ा लिखिया होया क्योंकि अनर्थ पूरे मन नाल करदे आ, गलतियां पूरे मन नाल करदे आ, धोखा फरेब छल कपट पूरे मन नाल मनुख करदा, बड़ी सावधानी नाल करदा, अंदर बड़ा भारी अनर्थ है। कर कर करना लिख ले जा, जितना मन दा भाग जागे होया है। विद्वान कहते ने एक भाग जागे है, नौ ते सुते पैन, सिर्फ एक भाग। वो जिहड़ा एक भाग जागे होया उसनू पूरी उसे एक भाग दे जागृति दे नाल जप करिए, इतनी समर्था फिर मिल जाती है, बाकी नौ हिस्से जाग पैंदे। जागया होया मन भगवान हो जाता है, सुत्ता होया मन शैतान हो जाता। मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण। हुण एक दो नुक्ते होर भी मैं थोड़े सामने बयान करा। एकाग्रता बनन लग पई है, रस आण लग पै। अगर वाहिगुरु आखण दा रस आण लग पै तो समझना मन अरोग होंदा जा रहा है, जागदा जा रहा है। सोना ही रोग है, जागना ही तंदुरुस्ती है। अगर वाहिगुरु आखण दा रस आण लग पै, कीर्तन सुनन दे स्वाद आण लग पै, बाणी जपण दे रस आण लग पै, गुरुद्वारे आण नू उत्साह पैदा होंदा, उमंग पैदा होंदी है, तो समझना मन जागदा जा रहा है, तंदुरुस्त होंदा जा रहा है, रोग मिटदे जा रहे हैं। अगों फिर एक खतरा है, अनंत जन्मां तक जो असी जीवे हां वो उन्हां संस्कारां विच जीवे हां जो संस्कार काम तो बने ने, लोभ तो बने ने, अहंकार तो बने ने, क्रोध तो बने ने, मोह तो बने। अनंत जन्मां तो इन्हां ही संस्कारां विच जी रहे हैं, जी रहे हैं, लोभ आश्रित जी रहे हैं, काम आश्रित जी रहे हैं, अहंकार आश्रित, इसे दे ही संस्कार ने। जैसे मन जुड़दा है नाम दे, कदों जुड़दा है, जद भुख पैदा होती है, ये सारे संस्कार मिटदे ने, तो सारा संसार खत्म होंदा है। वही संसार साडा है, उसे अज तक जीवे होंदे हैं। मनुख नू पहली दफा अनुभव होंदा है जिवें मैं मर रहा हूं, खत्म हो रहे, स्याही भी छांदी है। एक नहीं, मैनू सैकड़े अभ्यासियां ने कहा है, असी ते डर दे मारे छोड़ दिता है, नहीं कीता, कई चीख भी उठे ने, ऐ की होण लगे, ते खत्म होण लग गया। पर कीता की जाए, मन खत्म होण लगा है। अज तक हजारां तरह दे जो अंदर संस्कार पए ने, जिन्हां दे च असी जी रहे सी, वह खत्म हो रहे। एक नवी जिंदगी का जन्म आता है, पुरानी जिंदगी मिटती है। इनू कहिंदे ने द्विज, दूजा जन्म। एक जन्म मां बाप तो होया है साडा, पर एक जन्म जप तो होंदा है, शब्द तो होंदा है, गुरु तो होंदा है। सतगुर के जन्मे गमन मिटाया, बड़ी कीमती पंक्ति है। मां बाप दे घर जन्म लिया सी, जन्म मरण चलदा ही रहा है, चलदा ही रहा है। गुरु दे घर जन्म हो गया, जमना मरना मिट गया। सतगुर के जन्मे गमन मिटाया, ये आवागमन मिट गया, ये जमना मरना मिट गया। क्यों? हुण गुरु दे घर जन्म हो गया। मां बाप दे घर जन्म होंदा है पुत दा, सुत दा। गुरु दे घर जन्म होंदा है संत दा, भगत दा। और मैं अर्ज करा, संत नहीं मरदा, संत अपने घर दे टिक जांदा है। संत मुए क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत वापरे जो हाटे हाट बिकाए। संत जीवदियां जी इस तन तो उच्चा उठ जांदा है, इस नूं कहिंदे ने जीवत मृतक, मुरदे वांग मुरीद होए। जीवत मरे मरे फन जीवे, ऐसे सुन समाया, अंजन माह है निरंजन रहिए बौलना बहु जल्द आया स्वास्थ्य चल दे पैने जीवदा पे जीवत मरे मन दे तल ते मर गया आज तक दी जो जिंदगी सी अहंकार आशत लोभ आशत काम आशत जो बने संस्कार सन जिन्हां दे जी रहे असी खत्म जब खत्म होण लगदी है भय उसे तरह ही पैदा होंदा है जिवें शरीर खत्म हो रहा है डर उतना ही लगता है जिवें शरीर खत्म हो रहा है कई इथों वापस मुड़दे ने एक नहीं चंगे चंगे अभ्यासियां ने कह दिता मैनू कि ज्ञानी जी ये की हो रहा है असी तो छोड़ बैठे हैं तो खत्म होण लगे सी मैं ठीक है खत्म होण लगे सी अज तक जिस तरह की दुनिया जीवे आ वह खत्म होण लगी सी ते जे किधरे डरदे ना भजदे ना नवा जन्म हो जाना सी फिर मां मां नहीं दिखाई देनी सी मां भी रब का रूप दिखाई देना सी पिता भी रब का रूप दिखाई देना सी भरा भी रब का रूप दिखाई देना सी पत्नी पति भी रब का रूप दिखाई देना मात पिता सुत बंधव भाई नानक होआ पार ब्रह्म सहाई सारा परिवार निरंकार का रूप दिखाई देना सी ते सारा परिवार की सारा संसार निरंकार का रूप दिखाई देना सी जो दिसे सो तेरा रूप गुण निधान गोविंदन अनु ए विस संसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया जीवदा रहे तू पहले परिवार दे संसार दे हुण तू जीवना सी निरंकार दे जीवदा रहे अज तक तू पदार्थां दे हुण जीवना सी परमात्मा दे पदार्थां दा जीवन ते परमात्मा दा जीवन इते जमीन आसमान दा अंतर है पहला जीवन वाकई खत्म होंदा है द्विज दूजा जन्म होंदा है तो भय उतना ही पैदा हो जाता है जिवें शरीर की मौत चंगे चंगे अभ्यासी जिन्होंने मैनू दसिया ते मैं कि किधरे उस भय नू एक पासे सुट देंदे किधरे पहले बोध होंदा बड़ा कीमती अवसर गवा दिता ते जिन्हां नू मैं दसिया कि कोई बने ते डरना ना ते कईयां ने रोंदे होए आखिया खेड बनी ने नहीं बनी उदों डर करके मुड़ गए वापस हो गए तो मैं अर्ज करा ऐसा महसूस होगा अगर कोई अभ्यास करता है मैं खत्म हो रहा वो जन्मां जन्मांतरां दे संस्कार जिन्हां दे अज तक जीवदे रहे हां खत्म होंदे ने एक नवी दुनिया का जन्म आउंदा है ऐसी दुनिया जो कदी नाश नहीं आउंदी ऐसी दुनिया जिस दे सदा नवीनता बनी रहिंदी है महारस बनिया रहिंदा है महा आनंद बनिया रहिंदा है उसे नूं कह देंदे ने हुण असी संसार तो निकल के निरंकार दे चलीन हो गए हुण पदार्थ तो निकल के गोविंद दे चलीन हो गए गोविंद दे चलीन होके गोविंदा रूप हो गया बूंद सागर दे चलीन होके सागर हो जाते अलग नहीं रह जाते दरिया सागर दे चलीन होके वो सागर हो जाता है गंगा नर्मदा जमुना नहीं रह जाती वो सतलज ब्यास नहीं रह जाता वो दजला फरात नील नदी नहीं रह जाती वो तो सागर हो जाता है परमात्मा दे चलीन होके ना मनुख हिंदू रह जाता है ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई परमात्मा दे चलीन होके मनुख परमात्मा ही हो जाता है ईश्वर का रूप हो जाता है एवें नहीं कबीर ने कह दिता सी ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड परान जिस रब दे चलीन हो गया है कबीर वो रब मुसलमान नहीं है वो रब हिंदू नहीं है कलगीधर पातशाह कहने नमस्तंग अम अजबे नमस्तस्त अजबे नमस्कार है परमात्मा तैनो तेरा कोई मजहब नहीं तेरी कोई जात पात नहीं तू सारे थावां दे वसदा है तेरा कोई एक मुलक नहीं सारा ब्रह्मंड तेरा मुलक है जैसे जब कोई परमात्मा दे लीन होंदा है ये सारिया दीवारा गिर जांदियां ने भाषा की दीवार मुलक की दीवार मजहब की दीवार जात पात की दीवार तरह तरह के संस्कारां की दीवारा ये सारिया गिर जांदियां ने मनुख निरंकार का रूप हो जांदा है उसे नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान पै करदे ने गुर कृपा जय नर को कीने ते ए जुगत पछाने नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पाने संग पाने, जिस दिन बूंद सागर दे चलीन होंदी है ओ ही जाने सागर हो गए, असीम हो गए, उन्हें नापी तोली नहीं जा सकती। असीम होण दी संभावना मनुख दे अंदर छुपी हुई है, ताई ते मनुख रजदा नहीं असीम होना चाहता। महान होण दी संभावना मनुख दे अंदर छुपी हुई है, ताई ते मनुख किधरे राजी नहीं होंदा, संतुष्ट नहीं होंदा। मैं फिर अर्ज करा, जितने चिर तक मनुख नूं परमात्मा नहीं मिलिया रजेगा नहीं, तृप्त नहीं होवेगा, सुखी भी नहीं होवेगा, कुरलांदा रहेगा, रोंदा ते पिटदा ही रहेगा। जीवन दा लक्ष्य है परमात्मा दी प्राप्ति है, जीवन मिले है परम जीवन दी प्राप्ति लई, परम जीवन परमात्मा है, ऐ जीवन संसार है। इस संसार तो उच्चे उठ के निरंकार दा जीवन प्राप्त करना इस जीवन दा लक्ष्य है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन, इसे जीवन विच इस लक्ष्य नूं असीं प्राप्त कर सकीए। यही तेरी अवसर यही तेरी वार, घट भी तर तूं देख बेचार, इस अवसर नूं गवा ना देईए, ये अवसर हथों चला ना जाए। वारी मिली एक अवसर मिले है, भई प्राप्त मानुख दे होरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी वरिया। तू चोटी दा धनवान बन गया, गुणवान बन गया, साइंटिस्ट बन गया, मिनिस्टर बन गया, चौधरी बन गया, सब रस्ते दे पड़ाव ने, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोंदा रहेगा, पिटदा रहेगा, कुरलांदा रहेगा, दुखी रहेगा, संताप ग्रस्त रहेगा उतने चिर तक जितने चिर तक परमात्मा नहीं मिल जाता, अकाल पुरख नहीं मिल जाता। सतगुर रहमत करन सारिआं ते, बख्शिश करन, ऐसी सूझ देन, ऐसी समझ देन, ते असी उसका पूर्ण तौर ते यतन करिए, ताकि इसे जीवन विच परम जीवन नूं प्राप्त कर सकीए। यही धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का उपदेश है, संदेश है। इतनी विचारां इस वक्त प्रवान करनिया, कल सवेरे शाम ते परसों सवेरे दी हाजरी भर के दासा ने इत्थों फिर झांसी चले जाना है। सारे जथे भी झांसी जाणगे, फिर कलकत्ते विसाखी ते फिर दासा ने धन गुरु अंगद देव जी महाराज के 500 साल शताब्दी पुरब ते खंडूर साहब जाना है, अमृतसर, पटियाला, होर पंजाब के वख वख पिंडां विच 500 साल जयंती के संबंध विच दास ने हाजरिया जो है भरनिया ने, ते हुण जिहड़े नाल आए हुए जथे ने वाकई अपने अपने फुलां की महक लैके आए ने। इन्हां कोल जो कला है, जो प्रभु ने दिती है, जो गुरु ने दिती है, सतगुर रहमत करन इन्हां दी कीर्तन दी धुनां दे नाल वो आप भी करते नाल जोड़न, ते थानू भी जोड़न दा जो है उपराला दे सकन। इस तरह तुसी भी जुड़ सको, ताकि सुनना ते सुनाना दोहां दा सार्थक हो सके। ये अज दा कीर्तन प्रबंधक सज्जन तुहाडे सामने सारी ले सरवण करा देंदे ने। पहले आरंभता करनगे अमृतसर तो आए भाई साहब भाई हरजीत पाल सिंह जी, दूसरी लिस्ट जो नाम है सारे दे सारे प्रबंधक थोड़े सामने इन्हां दे नाम सुनाई जांदे ने। जो कुछ आपने सरवण कीता है सारिआं दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। बोल चुक दी शमा पते प्रवान करने।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬੈਗ 22.99 ਦਾ, BC ਹੌਟ ਹਾਊਸ ਟੋਮੈਟੋਜ਼ 98 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ, ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਲਵੋ 98 ਸੈਂਟਸ ਦੀ ਗੁੱਛੀ।
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे BC विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1।
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
4: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
5: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
3: जां कॉल किरण @604581-1900।